0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।

0: From Spark My Faith, मेरो विश्वासमा चमक ल्याउनुहोस्। कार्यक्रमका बारेमा तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि फोन नम्बर 01-6619-460 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: आजी नेना दिगु दु निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। लासा छिगु जीवने थौ चिन्ता जागु जुइफु। जय मसीह। जो जो लपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यु जीवनिया छेण श्रृंखला भाग एक के छिपी सकसित सुब्या। परमेश्वर सुनक चुने मखुतका प्रक्रिया त विश्वासया। जय मसीह। जो जलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यु जीवनया छेन श्रृंखला भाग आठ के शीर्षक सित नसुभ्या। गबले गबले छित लगे जुई फुकी जीवन तस्कए थाकुया चुंगुदु अले छि फे माला चुंगु फुक्क परीक्षा के परमेश्वर गनदु धका विचा याना चुना दिगु जुइफु। परमेश्वर सुंक चुना धका छि मने सोचे याना चुंगु जुइफु। वैकल छि त आया अवस्था पिने हे त ग्वाली आए त इच्छुक मजु वा वैकल छि धका बिउगु बस वा सवा बिउ मरो थौजे छिपिलिसे इनी तेनुगु ख छु धासा छि जीवनया नीति ब्यादिगु बस पुवंके गु ख। वेकल परमेश्वर गबले देनी मखु वेक सुंक खने दैबले थुकिया अर्थ ख। वेकल पर्दाया लिउने जायना सुना दिगु दु छिगु जीवने त्याके फेमा धका छिगु नीति तस्क तयारियाना चुङ्गु दु। बिलाप सुंगु निगु निखुगु पत्के धातगुदु परम प्रभु लपु स्वै पिं वु या त माली पिं सक्कसिगु लागि परम प्रभु भीमख। सुंक चुना परम प्रभु या उदार यागु लपु स्वेगु हे तस्क बाला गु ख ख। परमेश्वर थगु वचन या त झित व्याधिगु फुक्क वचन पुङ्के त न्याब्ले विश्वास याए बमख। वैक या योजना वो यी कथ ज्याजुको प्रक्रिया या त विश्वास याएगु यु महत्व दु गुनासो याएगु स्वया झिसम परमेश्वर या त सुभ्या प्रार्थना याएगु वो वैक या अजु जागु सवा काइगु ज्या पुङ्के त पिया सुनिमा। यस्तरया सफुती झिस छगु त धङ्गु उदाहरण खनाचुना गन परमेश्वर थ मनुए त अन्तिम उदाया नीति पर्दाया लिउने ज्यायाना दिल थगु बाखया न्योने भाग न्यागु सम्वेदिया दृष्टिकोण कना त गुदु कि परमेश्वर या मनु त विनाशया नीति निश्चित जाइगु ख। परमेश्वर सुङ्क खनाचोसा अथेसा यस्तर वैकया कका मर्दै कैन प्रार्थना के यी बिया दिल अले परमेश्वर इम त थथेयाना निर्देशन बिया दिगु ख। वहे कथ इमस ज्याया त छा प्याछि इले परमेश्वर थ त धङ्गु बुद्धि शक्ति व अनुग्रह छेला थ मनुते त छुटकारा याइगु थाकुकु ज्यायाना दिल। एफिसी सोगु अध्याय निगु पदे धातगु दु झित व्याधिगु शक्ति झिस फोनगु स्वया न अप्प अले मने तैगु स्वया न अप्प बी फुम परमेश्वर झिगु चिस धङ्गु दिमाग कल्पना याय मफुगु स्वया न परमेश्वर या बुद्धि यक्कु हे त न। वेकल झित व्याधिगु बच झिस कल्पना याय मफु गु स्वया यक्कु त द झिगु नीति थो परमेश्वर या त भलासा याइगु ख। थो परमेश्वर के गु ख ख कि वैकया झिगु जीवन व भविष्य या नीति त धङ्गु किपादु अले व प्रक्रिया प्रकट जुई धका पिया चोनेगु ख। रोमिया पुस्तक छिंछगु अध्याय श्रीसङ्गु पदके ध्यात गुदु ओहो परमेश्वर या धन ज्ञान व बुद्धि गुली त द वैकल ज्ञाना दिगु न्याय थुइका थुइके मफु अले वैक यागु लपु सिके त तस्क थाको परमेश्वर झिगु जीवने गथेयाना वयागु इच्छा पुवंकी धैगु वयागु हेल हातेदु वेकल झिगु नीति वयागु बस पुवंके त वेकल चले यायगु दक्को शक्तिशाली लपुई त झिस थुके फैमखु झिगु ज्या धैगु वेकल झिगु योने बियादिगु बस या त प्रार्थना यायगु व कार्यान्वयन यायगु जक्क ख यहोसुया नापाङ्गु अध्याय झिस बोन गण परमेश्वर यहोसुया प्रतिज्ञा भूमि दाबी याय त निर्देशन बिहादिगु ख यहोसु या त परमेश्वर हेर्दन खुसी सिथे येना छि फै धका वो खुसिया पारिपट्टि थगु शत्रुते त गथेयाना बुके फै धैगु छुन जानकारी बिउगु मरु वयागु छगु जक्क कर्तव्य परमेश्वर या बस कथ ज्यायागु वो थ मनुते त बच बिया तगु देशे ठेङ्केगु ख यहोसु परमेश्वर या आज्ञा पालन न्याय त अले यहोसु या सफु बोने बले छि खने कि गण परमेश्वर छगु लिपा मेगु आजु चागु ख याना दिल गुके या लिचो कथ वेक या मनुते स परमेश्वर या बस बियादिगु देशया दाबी या त परमेश्वर एस्तर वो यहोसु या त थे छिगु नीति न थथे हे याई अले छिगु नीति वेक या मतिना निसर्थ अनन्त ख परमेश्वर या योपि लेमहु वेकन येकु पि छगु जक्क सर्थ वेकया त आशा व भलसा याइगु ख अले वेकया झित झिस यायगु ज्याया त निर्देशन बि बले झिस उगु निर्देशन या त विश्वास याना ज्या यायगु याइ झिस अथे याइ बले वेकन फुक्क ढोका च्याकादि अले वेकन झित बियादिगु अजु चागु बस प्रकट जुइगु फुक्क स्रोत साधन बियादिगु दु थौया बसन येनादिगुने छित परमेश्वर सुव्याबीमा जयमसी नेनामिपिन छिमस नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगु हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी
2: प्रभुलाई धन्यवाद चढाओ वहाँको नाउँको पुकारा गर जातिहरूको बीचमा वहाँले गर्नुभएको कार्यहरू प्रचार गर भजन संग्रह 105 अध्यायको एक पद गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्ज अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नयाँ आस्थाको किरण प्रस्तुता हरि जिज्ञासुको साथमा
3: आदरणीय श्रोता मित्र जयमश्री नमस्कार रेडियो कार्यक्रम नयाँ आशाको किरणमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रेडियो कार्यक्रम नयाँ आशाको किरण लुथाङ और मिसी नेपाल एलएसएम नेपालले तयार पारेको यस कार्यक्रमबाट हामी तपाईँलाई निरन्तर रूपमा उत्साह दिँदै आइराखेका छौ आशा गर्छु विदेशमा जो हुनुहुन्छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई सहसाधकारी बढाइरहनु भएको छ त्यसै गरी स्वदेशमा जो हुनुहुन्छ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ अन्य विभिन्न कामहरूमा धेरै कुराहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ जो जहाँ भए पनि तपाईँहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु हाम्रो एउटै चाहना हो हामी सबैजना अर्थपूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकौं र हाम्रो जीवनलाई सुन्दर तरिकाले अगाडि बढाउन सकौं भन्ने हो र आज म तपाईँलाई एउटा अर्थपूर्ण विषयमा र महत्वपूर्ण विषयमा केही उत्साह दिन चाहन्छु र तपाईँ हामी सधैँ उत्साहित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ आज जीवन किन सुन्दर छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई केही उत्साह दिन चाहन्छु त्योभन्दा अघि आउनुहोस् एउटा समधुर क्रिश्चियन भजन गीत सुनेर हाम्रो हृदयलाई तयार पारौं

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ।
2: आज ही येनाडी गुदु वापत्ती कया आत्मिकी रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमक हया भ्यू। जय मसी जोजोलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ के छि सकसितल लसको छ थौया बचनया शीर्षक दु उद्धारकर्ता या आवश्यकता जिगु विश्वास ए चमक हया भ्यू। थौजी छ निदो द स्वयं परमेश्वर येशु ख्रिस्ट या हालिमे हैको कारण वो उद्देश्य या अन्वेषण याएको जुई येशु छु पुवंगे मागु आवश्यक ख जी अराजकता जाइगु हलिमे जन्मे जुया छोपी ख हलिमे या देशे निरन्तर रूपमा युद्ध जुया छुनी जिस मन मतुनागु इले हे भूकम्प वो खुशबा थे जागु प्राकृतिक प्रकोप झियु लुख्या वया चुने जी त खु वो हत्यारा त्यसमा घेरेयाना तगुदु थो हलिमे छा थुनी मसी दुष्टता दु भविष्य छु आशा दु थुपी न्यसया लिस बित झिसन नापा हे लिहा उनेमा कुब्ले परमेश्वर र मनुदेगु नीति स्वर्ग या